ये तुम रे ध्यान को मानने को ध्यान संता आनंद के मंगल फाला के भगवन हर गोर को बिनंद अमृत बिला बिन बिन

जावै तोरा। ऐसे चुन प्रताप ते दिवन बड़े प्रताप, तीन लोग जाय जाय कर रे राम साहब तोरा। सगल द्वार को छाड़ के कहो तुआरो द्वार, बाह की लाज सुन गोविंदा स्वर दोहरा। राज करेगा खालसा आकी रह न को, ख्वार हो स मिलेंगे बचे सुन दो दोहरा। उठ के सबा मलेश की कर उड़ा पासार, नंका वाले बंदे का नह कलंक अवतार। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते, स्वयं भव सुभम सदा सत्युक्ते, दुकाल प्रणाशी दयाल स्वरूपे सदा सगे आप अंगंग में होते। देख गुप्त रुद्र आप अजनान।

जी गुरु गरीब निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरी अपर गुरु कीआं संगतां वल्लों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करदे हुए बेनती मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जाने कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देर उगता दे नाम दे दात काल राज करनी यात्रा

0: Rogo, अनभूत दे जान छ जगत करता सुदी करता से नगा सर कटो लगे अनभूत करम दादा ने कटो लगे अनभूत करम दादा ने अनभूत करम जे सत्य मित्र नहीं जन्म जात जे सर प्रकार से नहीं जन्म दादा ने करम करम ने जन्म से नाम दे ने के ने के उत बना जे जात पाप पर सत्य मित्र जे जात के पाप ने जन्म जे जे करू के ने रात ने जे जन्म जात ने जन्म रे जय करम मेरे नहीं जात बात नहीं मेरे मेरे मन में जन्म दादा जन नाम भगत ने मेरे पर दया जय रोग सुख ने सबर सुला जय रोग सुख ने सबर सुला जय दास बात नहीं देह नाश जय दास मन ने उपरान जय दास रोग ने जरूर जगत जय दास सुख ने वो भगत जय दास जय काल काल करो नानक जय सरू बलक ने प्राण जय नित ने दो जन जय जय रूप ने भगत तेरे जय
1: जय अंडे ब्राह्मण
0: ਰਚਿਓ ਜਿਹਾ ਡਰੀਏ ਨਾ ਮਨ ਰਚਿਓ ਰਚਾਵਤ ਤੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਕਿਓ ਮਨ ਤਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਕਿਓ ਅਨਭਵ ਤਰਾ ਸੰਧਰੂ

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अचिंच तेज मानिए सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानिए, नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोग ताग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है, सदैव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववरण है, जिमी जमान के विके सदैव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदैव सर्वठोर में विशेक हान मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यौ कुरान नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है, नहान है न बान है समान रूप जानी।

न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न चित्र है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत फेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैक है न भेद है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न छिद्रज है न वर्ण है बेअंत है अनंत है अनंत तेज मजानी है अभूम बीज है सदा छिज तेज मानी है न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है दुख है अदाग है अच्छे प्रताप देखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है।

रूप राग नारेक रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद वृक्षो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद बुरग अपार हस्त कीट बिके बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय।

जाच के नर मच मार समर गौर का पार नेत नेत बुकार ही सेव सकराओ मुखचार सर्व सबत पतार के दर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज दे राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैष्णंके बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी लभी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद

सोद सोद हटे सफाय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महागव गढ़ गाड़ अनंत हर हर कहे उस

हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वहर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमका जले थले महज पद जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार सही पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रव मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद फेव ना पावई शिव रुद्र ओ मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास।

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून किते दाम नीत मंगन ध्वजा परंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विवर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सल उर्दा दे दामनी प्रहासन सुक्षम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ कते रक्ता सुर आचन जोध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते भणियर भुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहते सन्नाहन अर्थ प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम्ब धुंगारण द्रप मते दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन परम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु गमंगण ससुर झमंगण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खंड तुंध तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती याद नाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी सत्र प्रकर खण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कथा।

वी प्रकार खंड सरवर वर खंड दोष प्रदर खंड बिदल दले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय ओसी मैं गाजु मर्दन आदा नाथ गाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंधान वर्धन बिडाल वधे सरदार अभिपरखण दुर्जन दर्खण दुलमरखण धरम दुजे धूमराज विदुंसन सुणत चुनसन सुम।

चार जिमकी हो आप करते बसार जद बभूतन भय अनंत तव कहो जथा मत त्रैंड तंत करता करी मकादर कृपाल अद्वय अभूत अनवय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूढ़ क्यों न सेवंत ताहे कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा

मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेजन भिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायु न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई गोट इंद्र जय पान हार।

दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के बल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड पारण पूरण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद वेद कते वेदो चारे रोज ही राज बिलोक राज करो करो हान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव कपे अंग बेव न बेव लख्यो ब्रह्म शिव भरमाए वेद पुराण कते कुरान हसे।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह वीर स्नेह सबोदर नेह विरक्त अगेह अच्छा है। जान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम्हारे सुंदर श्री।

जा चुजंग सुदानव देवा भेव तुम सब ही कर द्यावे भूमा का अस्पताल रसातल जाच भुजंग सब सृण्यावय पाए सके नहीं पार प्रवाहों को ने तय ने तह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो वेद कते बन वेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितूज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग त्यारे याद नाथ जप्यो तिन्ही गुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महापद तारे देश फिरो कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जय मजाल है युद्ध के जतैया विरुद्ध।

तेज हूँ गुतार है ग राजसी को सार है ग शुद्धता को घर है ग सिद्धता की सार है कामना की खान है ग साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन को निंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है जो कहूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है।

विश्व को भरण है गे आपदा को हरण है गे सुख को करण है गे तेज को प्रकाश है पाइये न बार बार बार हूंगो पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हलप्पी देव पूर्वी न बार पावे असतय नाश है देवन को देव महादेव हूंग देव है निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है।

राजन के राजा महाराज हूँ साजा महाजोग हूँ जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के चीर कैसी चीरावत चाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कुल के हंस नि से हरु मही रसी हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदा गढ़ कीरतती हारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाज कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बुलंदाबाद गिरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके तुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बकरी गंधारी गोर गखरी गुरदेज।

हर कीरत हमरी रहरा सुरहा हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपतास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संग

0: से भगत भले जन नानक जी भले जो खावे मेरे हर भगवंता तू हर पर परम पर कर जी खुद जी बढ़िया वरदान कोई तू जग जग एक को सदा सदा तू एक को जी तू ना चल कर तलो जी तू ना चलो जल आवे भवे सोई वरते भी तू आपे कर सोई आपे कर सोई श्रेष्ठ सद पापे जी सद आपे
1: ਗੁਰਮੁਖ ਛੋੜਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ

तन जड़ाई अपने लहां सो सजन। कहिंदे अपनी जिंद वेच के सावे मुल अपने जीवन दे मुल जिंदगी दे मुल। कहिंदे कोई खंभ मिलदे होण जिहड़े खंभ मैनूं धन कलगी धर पातशाह जी दे चरणां विच लै जाण ते मैं अपना आप बेच के भी वह खंभ खरीद लवां। खंभ खरीद लवां शरीर नूं लवां ला ऐसी उडारी मारां ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां विच पहुंच जा।

अपने बना के रखी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला नानक करके। वैद सुजान

तेरे करने सर्व विचार सत्ता तेरा अमर सत्ता दीवान सत्ता तेरा मुस्ता फरमान सत्ता तेरा कर्म सत्ता निशान सच्चे तुदा खेल लख करोड़ सच्चे